रस जह जा नहीं आत्म रस जह जा नहीं सो है खालसा रे सो है खालसा रे प्रभु मैं मोह मैं दास मैं प्रभु मैं

राग मल्हार बारे गुरु अमरदास जी का वचन है, मल्हार शीतल राग है, हर त्याया सांत होए। फिर ये भी हुक्म है, गुरमुख मल्हार राग जो कर है तीन तन मन शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मल्हार दा प्रभाव है सारे पासे, उत्साह दा वातावरण हो जाना। मल्हार राग विच बाणी दा मीह पैंदा दिसेगा, अते जिसने भी घुट अमृत बूंद पी लई ओ निहाल हो गया। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। अमृत बचन है, इस बाणी विच बहुते शब्द मीह अते बबीहे दे संबंधां नूं ही दर्शाउंदे हन। यह भारतीय संगीत का बड़ा प्रसिद्ध राग है, ना केवल संगीतकारां विच सगो जन साधारण लोगों विच बहुत प्रिय है। मल्हार एक मौसमी राग है, भारत की भूगोलिक स्थिति अनुसार इस राग का गायन सावन भादरों के महीनों विच वधेरे कीता जांदा है। बरखा रुत विच यह हर समय गाया जा सकता है, उंज यह रात के तीजे पहर गाया जाता है। इस राग विच दोनों निषाद लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध। इसका वादी मध्यम अते समाधि षड्ज है। डॉक्टर अजीत सिंह जी पेंटल पासों यह शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या अते दूजे शब्द का मनोहर कीर्तन राग मल्हार विच ही कर रहे हैं भाई नरेंद्र सिंह जी। पवित्र शब्द है राम राम बोल बोल खोजते वड भागी। पहला शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

पै कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा, मन लोकां पास फरोलदा। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनों भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कडासा। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिन मंत्र सुनाया, पवजन विचों कढ के मुक्त पदार्थ माहे समाया। ज्यों बुलावे तुम बोलहे स्वामी, ज्यों बुलावे तुम बोलहे स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग ना

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरह दे दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मा बंधना तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिव

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हन किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करदे हन, मत्था टेक रहे हन, धूड़ चक चक के मत्थे नाल ला रहे हन, धन धन कर रहे हन, धरती ते नमस्कार करदे हन बारंबार, जिन्हां नूं लोक नमस्कार करदे हन। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किस नूं नमस्कार करदे हो, तुसी किस नूं मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ए धरती दा कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती दी ए समर्था है कि पवित्रता बख्श सकदी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगां वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास उसदा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओह विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सात संगत, जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं भाई वीर सिंह, जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत, संत बाबा आनंद सिंह तों उपरंत ते सात संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं सात संगत ते सुणाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी सात संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओह डेरे दे विच होके जांदे, मिल के जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पुछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहंदे ने पुछो की पुछना चाहुंदे हो। महाराज नाले दा तुसी कहंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असी बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, ना तुसी मत्था टेक दे नमस्कार कर दे। 25 मिनट मत्था टेकया, 20-25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जाने साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम, भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर दा भजन होया है, असी तां अपने आप नूं नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम, जिवें बैटरी डाउन हो जांदी है कम करदी करदी, फिर उस नूं चार्ज करन दी लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तां मत्था टेक के असी अपने आप नूं चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो सास संजिथे वाहिगुरु दा भजन, वाहिगुरु दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे। सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती, इत्थे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असी एवें नहीं कहंदे, इत्थे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तो है नहीं, जिथे असी मत्था टेकदे हो ये धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इत्थे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसे ने परमात्मा दी याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे फिर पढ़ो,

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सात संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो सतनाम। बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी सिक्ख्या दे के बाबा जस्सा सिंह जी दे जीवन नूं ए सी गुरमुख दी कठाली विच ढालिया। ते सात संगत जदों शादी हो गई ते सात संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभा उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण सात संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहिब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उस दे ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उस दे कन्न भर दित्ते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घर वाली तेरी कदे ख्याल रखिया? वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही सिक्ष्या दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मंनदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, सात संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दाल दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू यह गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। यह नाम दी दात गुरु तो जो मिलती है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी सात संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे, 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी सात संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं सात संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव, जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते सात सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते सात संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नूं अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदीप सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतना दुनिया दी इक निगाह नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: इह बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर इह लाइन बड़ी औखी है, ये फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहण कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ये बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बाल क्या, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतियां। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया है, कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सत्संगत कीड़ियां दे पौन ते सुट दिंदे।

जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंद को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेंगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मनुष्य का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। पितर शब्द में बताया श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है। जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस श्री रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लाज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितर शब्द में और बोला, ओह जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी श्यो टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनिहारी क्या करेगी, जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई आंखों भाई, इतना बूढ़ा हो गया अभी भी बुरी वासनाओं का पानी भरता है,
अभी भी विकारों का पानी पड़ता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, ततलाती है। आखो भाई, मात को क्या हो गया? बूढ़े की मात को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मात भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो भाई, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं, एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचनचेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिग रहा था, माखियों का डिग रहा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा, एक काला, उस रस्सी को काट दिया। वो खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अनदिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली। इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों, पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम कि श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया। उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला? कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया। बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो भाई, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है, लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए, वो ऐसे ही है।
دیکھ لینا کسی کو یہ بتاؤ، کبھی کہہ کر دیکھ لینا، ارے بھائی نام جپ لے، آخو بھائی کرو، بہت کچھ کھا لیا پی لیا، اب تو نام جپ لے، کس کو پوچھ لیں؟ ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی پوچھ کر دیکھ لیں، ہم پوچھتے ہیں ایک ہی ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، کیا کریں ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے بہت کام کرنے ہیں، اپنے کٹمب کو پالنا ہے، اس کو کام لگانا ہے، ابھی تو ہمارے سر پر ہمارے کندھوں پر بہت ذمہ داریاں ہیں، ہمارے کندھوں پر، ہم سب کام کر لیں پھر ہم نام جپیں گے، پہلے تو کام تو مکا لیں، کام مکا لیں گے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لیں گے، ذمہ داریوں کو تو پھر کر لیں گے، نام جپ لیں گے، لیکن اس سے یہ پوچھنا چاہیے کیا کسی نے گارنٹی لی ہوئی ہے کہ ہم بوڑھے ہو کر مریں گے؟ کسی نے ایسی گارنٹی لی ہے کہ ہم سب ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے؟ ہم نے تو دیکھا ہے کہتے گرب گلے، ہم نے دیکھا کتنے بالغ کتنے جوان جوبن بھر میں چلے گئے سنسار سے، پتر بانی میں کیا ہے، نئے بہارک نئے جوبن نئے بردی کچھ بند، او ویلا نہ بوجھی ہے جو آئے پرے جم فند، کتنے آئے کتنے چلے گئے، یہ بھی بتایا گیا جیسے کرسان بوے کرسانی، کاچی پاکی باڑ پرانی، جو جنم ہے سو جانو موا، گوبند بھگت استر ہے تھیا۔ دیکھنا جب کسان بوتا ہے نا اس کو یہ یقین ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ جو میں بوا ہے اس کو کاٹنا ضرور ہے، ہر کسان جو بھی ہو جو ترتی میں بوتا ہے ایسا بھروسہ کرتا ہے ایک دن اس کو کاٹنا ہے، جو جن میں سو جانم ہوا، ایسے ہی جس نے جنم لے لیا یقین کرنا اس نے ایک دن مرنا بھی ضرور ہے، جس نے بھی جنم لے لیا وہ مرے گا۔ جب ہم نے دیکھا ایک کھیت میں ایک کھیت کا رکھوالا کسان نے وہاں پر بٹھا دیا راکھی کرنے کے لیے، جب راکھی کرنے کے لیے وہ گیا، اس کے جانے سے پہلے اس کھیت میں ایسی فصلیں تھیں جن کو ایسے پھل لگے ہوئے تھے جو پک رہے تھے، اور اس کے جانے سے پہلے ایسا بھی دیکھا اس نے ایسی فصلیں بھی تھی جن کو پھول آئے ہوئے تھے، پھولوں نے پھل بننا تھا، اس نے دیکھا ایسی فصلیں بھی تھی جو ترتی میں پنگر رہی تھی، اس کے سامنے بھی بوئی گئی۔ دیکھو رکھوالا تو کھیت کی راکھی کرتا ہے، کسی کو بھی کھیت میں اندر نہیں جانے دیتا، کچی فصل تو کیا وہ پکی بھی کاٹنے نہیں دیتا، لیکن کھیت کا مالک آ جاتا ہے، کھیت کا مالک آ کر اس کھیت میں جاتا ہے، راکھی کرنے والا اس کو سلام بھی بلاتا ہے، راکھی کرنے والے کے سامنے سامنے کیا ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، یہ مالک کے کیا ہو گیا، اس کسان کو کیا ہوگا، یہ پکی فصل کی بجائے کچی کیوں کاٹ رہا ہے؟
لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے، وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں ایسے نہ کرو ایسے کرو۔ ایسے ہی جب ہم سنسار میں آئے، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے بزرگ ماتا پتا دادا دادی آدھ ایسے بزرگ آئے ہوئے تھے، ہمارے آنے سے ہمارے گھر میں بہنیں آئیں، آنکھوں آئے، میرے بھائی آئے، میرے آنے سے میرے گھر میں بیٹی آئی، بیٹے آئے، دیکھو ہم آئے، سب پریوار دیکھا، کسی کی کیا مجال ہے، ہمارے کسی چھوکرے کو کسی بزرگ کو کوئی بول سکے، ہم جھگڑا کرتے ہیں، لیکن جب مالک پربھو آپ آ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کبھی 5 سال کا بوٹا لے جاتا ہے، کبھی 10 سال کا لے جاتا ہے، کبھی 50 سال کا لے جاتا ہے، کبھی 60 سال کا لے جاتا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو یہی بولتے ہیں، جس ٹھاکر سیوں نہ ہی چارہ تاں کو کی جائے ساتھ نمسکار، ہم تو یہی بولتے ہیں، نانک بولن چکھنا دکھ چھڈ منگی ہے سکھ، سکھ دکھ دوئے در کپڑے پہرے جائے منک، جتھ ہے بولن ہاری ہے تتھ ہے چنگی چپ، جتھے بحث نہیں کر سکتے، آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہاں پر تو چپ ہی کرنی پڑتی ہے۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے کھیت وہاں پر ہی رہ جائے، رکھوالے کوئی لے جائے، ایسے بھی ہو جاتا ہے پریوار یہاں ہی، ہم اپنے آپ کو اس پریوار کا مکھی مانتے تھے، وہ مکھی کوئی لے جاتا ہے۔ اس لیے سمجھاتے ہیں، آپ تو کہتے ابھی تو نہیں، ہم ذمہ داریوں کو پورا کر کر مریں گے، پھر نام جپ لیں گے۔ ارے بھائی کیسے جپیں گا، جب نینو نیر پہ تن کھینا پے کیس تو دوانی، رودا کانٹ شبد نہیں اچرے اب کیا کرے پرانی، جب آپ کا گلا کھوں کھوں کرے گا پھر جپ لیں گا، آنکھوں میں پانی نرنتر بڑھے گا بہے گا پھر جپ لیں گا، نہیں جپ سکے گا۔ کہندے ارے بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نے تو کیا کرنا ہے، کیا نبھانا ہے، آپ کے جو شریر کے انگ ہیں نا، ان انگوں نے ہی آپ کو ویلا کر دینا ہے۔ بھائی گرداس بھی بولے، انا لولا پنگلا تن تھکا من دے دستا، آنکھیں ہوتے ہوئی اندھا ہو گیا، پیر ہوتے ہوئے لنگڑا ہو گیا۔ میں نے تو دیکھا، آپ نے دیکھا ہے، جب بالک تھا تب بھی سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، بوڑھا ہو گیا اب بھی، بالک اوستھا میں دانت نہیں تھے، بوڑھا ہوا تب بھی، بالک اوستھا میں بھی کانپتا تھا، بوڑھا ہوا تب بھی، بالک اوستھا میں تتلاتی زبان سے مانگتا تھا، بوڑھا ہوا تب بھی۔ ارے سوچو بھائی، جب نام جپنے کا سماں ہے کیوں نہیں جپتے، آنکھوں بھائی ایسی الجھن میں بندہ ہوا، آج کہہ رہے ہیں، کائرے من بکھیا بن جائے، وشے وکاروں کے جنگل میں کیوں جا رہا ہے، آنکھوں بھائی گرو، ارے نام کیوں نہیں لیتا پرماتما کا، جس نے آپ کی ہر سمے سہایتا کی ہے، سہائی ہوا ہے، آگے بھی ہوگا۔
भूलो रे ठग मूरी खाए। एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहेगुरु, मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना, जी हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। आखो वाहेगुरु, उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, उसको गवाकर को तो जी भी नहीं सकते। ये सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहिगुरु, जब हम ये बोलते हैं भुलाया है, तो पितृवाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए भूला नहीं भुलाया गया है। आखो वाहिगुरु, भूलो रे। भगत जी ने कमाल कर दी, बिस्माती विचार प्रकट कर दिए। आखो वाहिगुरु, भूलो रे। देखना, ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मानमुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हैं भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? ता साहब कहते हैं, बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से पुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में पुल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो वाहेगुरु, ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला, भूलो रे ठग मूरी खाए, आखो वाहेगुरु, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो वाहेगुरु, जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी, ठग ओरी, भूलो रे ठग मूरी खाए। ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ, ज्ञान का पदार्थ, जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं। ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना, मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर। जे अगर मन वाला मनुख होकर, मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता, सिर्फ तन को पहचानता है, तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है।
जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे, मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है तो मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों वाहेगुरु, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आंखों वाहेगुरु, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है, उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहते इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोहो, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोहो, लोहे की कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो आखो वाहेगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है, ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के पोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ। ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदिक इस दे मोह पाप माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इसनु अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो वाहे, अपने आप को भुलाकर
माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना जिमें मधुमक्खी शहद की मक्खी, आखो वाहे, शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है, पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं, आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं, एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते, एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही, सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ, जमदूत उसको लेने आ गए। वो बोला, ऐसे करो भाई, मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा, ये धन आगे नहीं जा सकता। कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो, मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते, एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है, अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली, अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी, आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होएगे ओ तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम देओ तांची आन, निरपो निरपै होए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा।
कहते पर यह बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है। पूरा सतगुरु मिल जाए जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

जाते जाते क्या देखा, खेल खेलने वाले वॉलीबॉल से खेल खेल रहे थे। महात्मा रुके खेल देखने के लिए। महात्मा के शिष्य ने सोचा महात्मा भी दिलचस्पी लेते हैं। वॉलीबॉल जैसे उछालते थे उछलती थी। देखते देखते क्या हुआ, खेल खिलाड़ियों ने खेला, खेलते खेलते खेल बंद हो गया। खेल बंद होने के कारण अब महात्मा चल पड़े। महात्मा के साथ जो शिष्य था पूछा, क्या आगे खेल नहीं देखेंगे? अरे भाई क्या देखना है, खेल तो बंद हो गया। कदे कैसे बंद हुआ, कदे वॉलीबॉल से फूंक निकल गई। जब वॉलीबॉल में फूंक ही नहीं, हवा ही निकल गई, खेल कैसे होगा? शिष्य ने बोला, और जीत हार का फैसला कैसे होगा? अरे भाई देखो, अब तो ऐसे होगा, इस वॉलीबॉल से, इस बॉल से फूंक निकलने से पहले, हवा निकलने से पहले जो खेल खेला गया था वो देखा जाएगा, जीता कौन है, हारा कौन है। ऐसे महात्मा ने सोचा, हमें तो समझ आ गई। हमारे जीवन में जो शरीर में श्वास है, जब फूंक निकल जाएगी हमारा भी खेल बंद हो जाएगा। उतनी देर तक ही खेलेंगे जितनी देर तक अंदर फूंक है, श्वास है, देखना जब निकल जाएंगे फैसला दरगाह में कैसा होगा। इस शरीर में फूंक निकलने से पहले पहले जो खेला गया है उसका फैसला होगा, जीता कौन है, हारा कौन है। आपने क्या किया, क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया और ऐसा क्यों किया? दरगाह में फैसला तो वही होगा जो आपके शरीर में फूंक निकलने से पहले आपने क्या किया। तो आज पितर शब्द में समझाते हैं। मैं समाप्ति करता करता एक बात कहकर समाप्ति कर दूंगा। कहते देखना भाई, आपने जाना है, ये तो सच्चाई है ना, जाना है ना, जाना है हमने। हमारे कई साथी चले गए, हमने भी जाना है। हमने कई अपने साथियों को जाते देखा, हमने भी जाना है। भगत कबीर बोले, अब तो मन मान गया है मरने को आंखों वाई करो। पर कबीर बोले, मन मान गया है मरने को, पर क्या करें, हमें मरना नहीं आता। अब कैसे मरूं, मरन मन माने। आगे तो मानता नहीं था मरने को, अब मान गया। कोई ऐसा गुरु का लाल हो हमें मरना ही सिखा दे, हमें मरना नहीं आता। मैं एक बात बता दूं, जिसको मरना नहीं आता उसको जीना भी नहीं आता। ये सच्चाई है। जीते वही हैं जिसको मरना भी आता है। मरना क्या है, हमने जीते जी अपनी मैं को मारना है, मेरी को मारना है, मैं और मेरी को मारना है। यही बात मरने की समझाते हैं, हमें मरना नहीं आता। कहते ऐसे करो, जब आपने जाना ही है रास्ते के लिए, फिर एक राहदारी बना लो। आंखों भाई करो, आपको देखना फिर जम जगात नहीं, जम की चुंगी नहीं लगेगी, आपको जम दंड नहीं लगेगा, आपको रास्ते में रुकावट ना आवेगी।

आप राहदारी बनाकर जाना, ऐसे मत जाना। लेकिन ये बात बताते हैं राहदारी अपने आप तो बनती नहीं। ये कोई राहदारी बनाने वाला बोले कि मैं अपने आप ही एक टुकड़ा कागज का ले लूंगा ते मोर के बिना ही लिख लूं, नहीं ऐसे कोई नहीं मानता। जिस देश में जाना है उस देश की स्टैंप चाहिए। आखो वाहिगुरु। कहते ऐसे करो, वहां पर तो ऐसे है जह लालच जागाती काट, उसे जगात लेने वाले हैं, उस राहदारी के बिना तो लूटेंगे। कर्म धर्म पखंड जो दिस है तेन जम जगाती लूटे, जितना मर्जी कर ले। हम कहते हैं अच्छे कर्म करने चाहिए, ठीक है अच्छे कर्म करो, लेकिन सिर्फ कर्म क्यों? हर का नाम जप निर्मल कर्म क्यों नहीं? परमात्मा का नाम जपने वाला कर्म क्यों नहीं? कर्म आपको कर्मों के गेड़ में नहीं निकाल सकते। जे कर्मों में कर्मों का गेड़ निकाल सकता है तो परमात्मा का नाम। कहते राहदारी बना लो। कहते राहदारी कैसी होगी? कहते आपे शब्द आपे निशान, निशान राहदारी। कहते आपे शब्द आपे निशान, प्रभु की सिर्फ सलाह ही परमात्मा की राहदारी है। आखो वाहिगुरु। परमात्मा की सिर्फ सलाह, परमात्मा की वड़ियाई, आपे शब्द, परमात्मा की सिर्फ सलाह अपने आप है, और यही परमात्मा की वड़ियाई ही रास्ते की राहदारी है। इस राहदारी को बनाकर जाना। ये राहदारी आपके पास होगी तो रास्ते में आपको कोई भी ना रोकेगा। आखो भाई, इसको अपनी आत्मा के ऊपर, परमात्मा की सिर्फ सलाह को इतनी कमाई करो, इतनी कमाई करो, अपनी आत्मा ही उस सिर्फ सलाह से रांग लो। आखो भाई, आखिरी बात कहकर मैं समाप्ति करूंगा। हमें फिर बोलते हैं आपने तो बोल दिया, ये भी बोला है कि मरने के बाद मरने वाले के साथ कोई वस्तु नहीं जाती, एक सुई भी नहीं जाती, तो ये कैसे जाएगा? आखो भाई, ये भूलकर मैं समाप्ति कर दूंगा, कैसे जाएगा? आपने बोला एक सुई भी नहीं जाती, ये फिर कैसे जाएगा? राहदारी कैसे जाएगी? देखना पाकिस्तान बना था, उधर के लोग इधर आए, उधर के लोग उधर चले गए, मकान ने दुकानें साथ नहीं आई, जायदादें साथ नहीं आई, लेकिन जो वकील था जो अपने शरीर को बचाकर आ गया उसकी वकालत नाल आ गई, उसकी यह योग्यता साथ आई। जो डॉक्टर था जो शरीर को बचाकर आ गया उसकी डॉक्टरी तो आ गई, जो प्रोफेसर था उसकी प्रोफेसरी आ गई। जे अगर शरीर के बचाने के संसार के तबादलों में कोई शरीर को बचाकर आ जाए, प्रोफेसर की प्रोफेसरी कोई नहीं खो सकता, डॉक्टर की डॉक्टरी कोई नहीं खो सकता, वकील की वकालत कोई नहीं खो सकता, ऐसे ही जब हम संसार से जाएंगे शरीर भी साथ नहीं जाएगा, परिवार भी साथ नहीं जाएगा, दुकानें भी साथ नहीं जाएंगी, जगीरें भी साथ नहीं जाएंगी। जे गुरु शब्द की अपार कृपा से उसकी कमाई से हम आत्मा को बचा कर ले गए तो आत्मा पर चढ़ा हुआ परमात्मा की सिर्फ सलाह का रंग जरूर नाल जाएगा। यही रास्ते की राहदारी होगी। जह लालच जागाती काट, दूर रही ओ जानते बाट। इसे करके भगत रविदास जी बोले, उरवार पार के दानिया लिख ले हो आल पताल, हे चित्रगुप्त तो लिख लो, जो कुछ लिखना है लिख लो, मेरे को ऐसा समान ही नहीं जे तुसी जम दंड लगा सको। मोहे जम दंड ना लगई तजीले शर्म जजाल, हो मन जारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार। मैनू तुसी जम जगात नहीं लगा सकते क्योंकि मैं ऐसा माल ही नहीं लदया। को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, जा रहा मैं, रोक के दिखाओ, कोई रोक नहीं सकता। राहदारी होए कोई रोक सकता नहीं।
फिर समझाया जैसा रंग कुसुंभ का तैसो ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कह रविदास चमार। आज भी पितर शब्द बोल रहे हैं, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, भगत जना को दृष्ट न पेखा, भगत जना को दृष्ट न पेखा, पर होगा कैसे कहो नानक जी सतगुरु पूरा, वाजे तां कै अनहद तूरा। यो गल कही है, अब मोहे मिल्यो है जीवामन हारा, अब मोहे मिल्यो है जीवामन हारा, अब मोहे मिल्यो है जीवामन हारा, अब मोहे मिल्यो है जीवामन हारा। पूरा सतगुरु गुरु परमेश्वर ने अपार कृपा करके मैनु सतगुरु मिला दिता, अपार कृपा हुई। अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो गए, पूरा सतगुरु मिला और सतगुरु ने हमें आवागमन से बचा लिया, जन्म मरण से बचा लिया। इतने ही विचार स्वीकार करना, अखरवा घाट भूल चुक माफ कर देना, स्वीकार कर लेना। बोलते बोलते गुरबानी बोलते विचार करते कई प्रकार की भूलें होंगी। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अपार कृपा से बख्शिश हुई, जीवन में पहली बार ही इस रिकॉर्डिंग में यत्न किया गया हिंदी पर बोलने का, लेकिन आप अरदास करोगे आगे अभ्यास हो जाए। आखो भाई करो, इसलिए यत्न किया गया, जब मैं दूसरी स्टेटों में गया उन्होंने बोला, बहुत प्यार किया, कि आगे से कुछ कैसेट्स हमें ऐसे भी सुनाए। जैसे उल्लासनगर में गया वहां पर ऐसे ही मुझे संदेश मिला, और आप क्षमा कर देना, हो सकता है बोलते बोलते मुझे तो पता नहीं चलता। एक सांझ है पंजाबी और हिंदी की, मैं तो ये मानता हूं सांझ है, दोनों ऐसी सांझ परमात्मा ने हमें दे दी है। वो बोल लिया, वो बोल लिया, वो बोला गया, वो बोल लिया, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। सहजे सहजे हम यत्न करना है, यत्न करेंगे कि आगे ये अभ्यास हो सके, कुछ कैसेट्स और ऐसी रिकॉर्डिंग हो सके, दूसरी स्टेटों में जाकर हम ऐसी जो परमात्मा का प्यार है उसको बांट सकें। सबसे बड़ा प्यार है, सब वस्तुएं संसार से मिल सकती हैं लेकिन प्यार उसकी अपार कृपा के बिना नहीं मिलता। मुझे बहुत प्यार मिला है बाहर जाकर, हर श्रेणी ने प्यार दिया है, चाहे मैं असम में गया, असामियों ने भी प्यार किया। जब वहां पर पहुंचा सब बाहर निकलकर प्यार से मिलने लगे। ऐसे इच्छा थी कि जीवन में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग की जाए, जब मैं बाहर जाऊं जो विचार साझे हो सके, इन विचारों से गुरु की बात साझी की जा सके, प्रभु का प्यार बांटा जा सके। आपने कृपा की, जैसा भी परमेश्वर ने कृपा की आपने सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ अनंत साहब का पाठ समाप्ति, एक रिकॉर्डिंग हो रहा है कल की, फिर आपसे आज्ञा मांगेंगे। आओ अनंत साहब जी। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सत

विसारिए मन क्यों विसारिए ए वड़दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु माता दे उदर विच प्रतिपालना करदा है बच्चे दे। फिर जदों जन्म हुंदा है तां फिर दुध दी दात देंदा है। तेरे लिए किदियां उसने बरकतां छोड़ियां हन संसार विच कि माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विशारी है मनो क्यों विशारी है ए वडदाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। माता दे पेट विच जठर अग्नि जिथे तेरी प्रतिपालना अकाल पुरख वाहिगुरु करदा रहा क्या हुन न करेगा। इसलिए ए प्राणी ए जीव तू डोलना छड़ दे तू पटकना छड़ दे मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान। एक ईश्वर एक अकाल पुरख वाहिगुरु सारिया नु दे रहा है क्या तेनू ना देवेगा। इसलिए भाई तेरा फर्ज है जितने श्वास वाहिगुरु ने तेनू बख्श दिया न तू जप जप के उन्होंने सफल कर ले। कुदरत कीम न जानिया वड्डा बेपरवाहो कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में शाह। जितने तक तेरे श्वास चल रहे हैं तू उसका शुकराना कर तू समर्थ।

पांडा थानम स्थान लिखारी नानका जिन नाम लिखारी। वचन सुनाउंदे सी ओए तने दे पत्थर च जेड़ा रब आया क्यों आया पहले ओदी भावना च रब आया।

आप संगत में बैठे हैं, यहाँ का रंग अपना है, कहीं जुआ चल रही है उसका अपना रंग है, कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा।

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।